0: नालिस्ते मिठो निन्द्रा ल्याउने नवरत्न नवरत्न कूल ओइल को दुई मिनट को मालिस ले रख्छ तपाईलाई कूल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कूल ओइल चिसो चिसो कूल कूल
1: सबैको मान छुने
2: रेडियो भेरी एफएम

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Media.
1: Extreme energy drink.
2: एनएम बिगारा बचत खाता प्रदेश को प्रगति संग बचत को नाता
3: रारा को निर्मल पानी जस्ते सोच्छ आफ्नो अमूल्य बचत आजै खोलौ कर्णाली प्रदेश विशेष एनएमबी रारा बचत खाता
4: पाउनुहोस् पहिलो वर्ष निशुल्क मोबाइल बैंकिंग इन्टरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड डिमाट र मेरो शेयर पनि

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

नमस्कार। रेडियो भेरी एफएम 98.7 मेगाहर्ज को प्रसारण में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो यो प्रसारण तपाई राति 11 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। ताजा ताजा खबर, मनोरंजन अनि